0: अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लूण पंजवा पाया खिरत ता हुआ पाक पवित पापी स्योतन कड्या थुका पइया तित जित मुख नाम ना उचरै बिन नाम है रस खाए नानके वै जानिए है तित मुख थुका पाए महला पहला
1: पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण वी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रहो।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खस में पहाड़, हुरमति सुनो अगली वजो पी दूना खाए, खस में करे बराबरी फिर गैर तेंदर पाए, वजह गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए, जिसता दिता खाव ना तिस कहिए साबास, नानक हुकम न चले नाल खसम चले अरदास, नाल खसम चले अरदास, नाल खसम चले अरदास।

0: समाचार के साथ मैं फरहतनाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से आज की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी

बीत गए दिन भजन बिनारी। दोस्तों, रब कोई बार लभण वाली चीज़ नहीं है, वो तो साढ़े अंदर साढ़े हर साह विच वसदा है। बस लोड़ है मन दे उस आवाज़ नू शांत करके, है ना, सिर्फ परम पिता परमेश्वर की आवाज़ नू सुनन दी। कहिंदे ने चेते करिए उस दाता नू जिसने दित्ती है जिंदड़ी, उस दे नाम दी महिमा गाइए जिस दी रहमत सब तो उजड़ी।

पूरी आसा जी मनसा मेरे राम। ना मंदर विच ना मस्जिद विच ना काबे कैलाश, खोजी होवे ता तुरंत मिल जावां, मैं ता हाँ तेरे पास। लखां ओटां आसरे दुनिया दे झूठे ने सब यारा, सच्चा सुख ता मिलदा है बस नाम सिमरन दे पास।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

गर्मी तो थोड़ी जी राहत तां जरूर मिलेगी, लेकिन इस मौसम दे विच जदों किते बारिशां पै रहियां ने और किते हले हुमस जड़ी है वह फैली हुई है, हुमस ही हुमस है, इंसान गर्मी दे नाल घबरा रहा है, उदे विच बीमारियां दा खतरा भी जड़ा है वह वधदा जा रहा है। इस मौसम दे विच आई फ्लू ते पेट दियां बीमारियां ने वो तेज़ी दे नाल फैल रही ने, इसलिए डॉक्टरों की सलाह है भी अपने हत्थां नू वार वार साफ पानी दे नाल धोंदे रहो। जदों भी कितों बाहरों आओ जाओ तो अपने हत्थां नू जरूर साफ करो, तो कोशिश करनी है बई अखां नू बिना वजह हाथ ना लगाओ, क्योंकि जेडे अखां ने बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा ने साडे बॉडी दी, साडे शरीर दी, शरीर अपना एक मंदिर है, तो फिर इस मंदिर की पूजा जेड़ी है ना वो एवें होनी चाहिए भी असी साफ सफाई का ध्यान रखिए, बाहर का कटिया होया फल या फिर खुला खाना खाण तो परहेज़ करना चाहिए। याद रखो बई सावधानी ही साडी सब तो वड्डी जेड़ी है ना सुरक्षा है इन्हां बीमारियों तो। जेकर काया निरोगी है तो हर दिन एक त्यौहार है, सेहत दी संभाल ही जिंदगी दा असली प्यार है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ, ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ, ਅਤੇ 8:30 ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से संसद का मानसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए, खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और फीफा फुटबॉल

0: विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग उन्हें 5 लाख रुपए के उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा और राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल

0: फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के

0: पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties. Monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। सरकार ने संसद के मानसून समागम तो पहला अज एक सर्वपार्टी मीटिंग बुलाई है। नैशनल टैसटिंग एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों के मापियां नूं सख्त हदायत जारी करदिया फर्जी या AI राही तैयार OMR शीटां जमा कराने ते सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। CBSE ने 10वीं जमात की दूजी बोर्ड प्रीख्या के नतीजे ऐलान दिते ने। खराब मौसम कारण श्री अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थाई तौर पर रोक दी गई है। तो FIFA फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा के तीजा स्थान हासिल किया। फाइनल में अज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन नाल होगा। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने संसद के मानसून समागम तो पहला अज एक सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग दौरान सरकार संसद के दोवें सदनों के सुचारू कामकाज को यकीनी बनाने लई सारियां सियासी पार्टियां तो सहयोग मंगेगी। मानसून समागम कल तो शुरू हो रहा है, 13 अगस्त तक जारी रहेगा। समागम दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों से चर्चा तो उन्होंने पास होने की उम्मीद है। लोग सभा के स्पीकर ओम बिरला ने नैशनलिस्ट सिटीजनस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी संसद मैंबर सदन में वक्रे तौर पर बैठने के प्रबंध में मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने शिवसेना UBT के 6 संसद मैंबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में रलेवें भी मंजूरी दे दी।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। तुसी सुन रहे सी शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना।
1: वीडियो लाइक करन दे पैसे मिलेंगे, सो इजी।
2: फसिया
3: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। आरबीआई कहंदा है
4: जानकार बनो सुचेत रहो।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 9:30 बज रहे ने। पेश है जी प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान।
5: ज्ञान विज्ञान

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गईं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वो राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वो मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा रहेगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की ये यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिविनी भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। जंजीबार राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। बैठक के दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के समूचे दायरे की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी आज जंजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से ये अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं और दोनों ही परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस साल 96.78% छात्र सफल रहे।

0: हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है। एस्टोनिया में दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना होगा स्पेन से। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुहाडा रेडियो बेली गौरव जुड़ गया तुहाडे नाल और 5 बजे तक अज तुहाडी सेवा दे विच हाजर है। तो प्रोग्राम बहुत सारे साढ़े को चलाने वाले पाए ने। फिलहाल घड़ी दी सुइयां कह रही हैं कि धमक जिहड़ी है वह पैनी शुरू हो गई है। जी हाँ, प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी, तो फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

नमस्कार जी, एक बार फिर तुहाड़ा सारयां दा स्वागत करदा है तुहाड़ा अपना रेडियो बेली गौरव। प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं, धमक जलंधर पैंदी है। वो प्रोग्राम है जिहदे विच तुहाडे मन पसंदीदा गीत चलाए जांदे ने तुहाडियां ही फरमाइशां ते, और वो फरमाइशां जिहड़ियां तुसीं सानूं व्हाट्सएप दे राही कीतियां ने, जिहड़े भी उत्तिआं ने 10 बजे तो लैके 10:30 बजे तक सानू व्हाट्सएप किए ने, साडे नंबर 9465-36077 ते उन्हां दीआं फरमाइशां अज लईआं जाणगीआं। और जे तुसीं अज फरमाइश नहीं कर सके तां कोई गल नहीं, नंबर नोट कर लो 9465-36077। रोज़ सवेरे 10 बजे तो 10:30 बजे तक तुसीं मैसेज करने हैं इहदे ते, और तुहाडा नंबर जिहड़ा ना जरूर लगेगा, तुहाडा गाणा भी जरूर चलेगा। फिलहाल लो जी, रब दा नाम लै के करदे हां शुरुआत। और पहले जिहड़े अज साडे दोस्त साडे नाल जुड़े ने, जिन्हां सानू मैसेज कीता है ना, वो है पिंड शाहपुर मैतपुर तो विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, अनहद लवप्रीत, परविंदर ते उहनां दे बहुत सारे साथी। और श्रोतो, जदों भी तुसीं मैसेज करते हो ना, तो मैसेज में अपना नाम जड़ा है ना वो प्रॉपर स्पेस दे विच लिखना है, अपना नाम, फिर अपनी कास्ट, और बाद जड़ा गीत सुनना है। तुसी जदों कट्ठे कर देंदे हो ना, वो जड़ा घमासान चौधर जिहा पै जांदा है, फिर सानू नाम नहीं पता लगता कि नाम केड़ा है और कास्ट तुहाडी की बोली है, फिर वो सारे नाम वो कोलू भोलू तोलू कट्ठे मुल

बांधे ने तो मोतला महाराष्ट्र तो विजय सरकार रतनमाला आरती कुमारी बिल्कुल सही लिखिया जी इन्होंने जगह छड़ के मोती परोते जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल बलविंदर सरा, गुणतास रमनदीप मनिंदर सरा पिंड मोरजर सिखा तो हनुमानगढ़ तो राजस्थान तो साढ़े नाल जुड़ गए ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करन दे लई। पिंड ते डाकखाना लोहगढ़ ठाकरा ज़िला फिरोज़पुर है और स्वरण सिंह गिल, दिलजीत गुरनूर, डॉक्टर राम कुमार नारंग, बलदेव सिंह ते इन्हां दे नाल इन्हां दे बहुत सारे साथी होर जुड़ गए ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करन दे लई। सिद्धार्थ नगर दयापुर भावली तो गयान येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले ते सारा दा सारा येले परिवार, इन्हां नूं भी बहुत बहुत वधाइयां, इन्हां दा मैसेज भी जुड़ गया और इन्हां नूं शुक्रिया ताकि मैसेज इस तरह अगे भी करते रहे। पिंड इस्लाम वाला फाजिलका तो साढ़े नाल जुड़ गए हैं, सोहना राठी, ओम प्रकाश, शगुन, लवकुश, छत्रपाल, रजेंद्र, बब्बू, काका और पिंड कमाल वाला तो गुरमैल सिंह विरक कहिंदे ने ऑल एफ एम टीम का सोहने सोहने प्रोग्राम पेश कर लई, धन्नवाद जी, शुक्रिया तुहाडा सारयां दा भी। इस तरह साढ़े नाल जुड़े रहो, सानू मैसेज करते रहो ताकि तुहाडे नाल जिहड़ी प्यार दी साडी पींग है ना वह इस तरह चलती रहे। और हुण वारी आ गई है कि तुहानू गीत सुना दी, अज दा पहला गीत, पहला मतलब मेरे इस प्रोग्राम का, तुहाडे इस प्रोग्राम का, तमक जलंधर पैंदी दा पहला जिहड़ा गीत, पहला गीत आपां हाक मार रहे हैं सतिंदर सरताज होरां नूं। जी हाँ, सतिंदर सरताज दी सुरीली आवाज़ ते आ जाओ जी सतिंदर जी, तुसीं लंघ आओ। और कहिंदे वैसे भी सज्जन जदों राज़ी हो जाए ना तां रौला पाउण दी लोड़ हुंदी नहीं।

संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन

0: और हरियाली लाओ, सारे मिलकर पेड़ लगाओ, काटे ना हम भूल कर कभी इसके अंदर छिपी औषधि, अपना अपना तन मन स्वस्थ बनाओ, सारे मिलकर पेड़ लगाओ, सब सबको एक लगाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा, जन जन में यह भाव जगाओ, सारे मिलकर पेड़ लगाओ। धन्यवाद।
1: जी बिल्कुल, जदों असीं पेड़ लगाओ दी गल करदे हां, रुख बहुत सारे इंसानां ने लगा चुके ने जदों असीं खास करके हफ्ता मनाया। हुण आस उम्मीद करदे हां कि तुसीं बच्चे सारे ही उहनां दा बहुत ही वधिया तरीके दे नाल ध्यान रखदे होवोंगे, ते आउण वाले समें दे विच जिहड़े वी तुसीं पौधे लगाए ने, उह वड्डे वड्डे रुख जिहड़े ने, जरूर ते जरूर समां रहिंदे आ बण जाणगे, लेकिन उहनां नूं बहुत सारा प्यार और बहुत सारा समां देण दी जरूरत है। सो आस उम्मीद करदे हां कि प्रोग्राम दे जरिए जिहड़ियां आवाज़ां तुहाडे तक पहुंचदियां ने, उहनां दे पिछे छुपे होए मकसद, जिहड़े गल्लां बातां कीतियां हुई होंदिया ने, उन्हां नूं तुसीं अपने जिंदगी दे विच जरूर ते जरूर इंप्लीमेंट करदे हो। सो बच्चों की हाजिरी लग रही है जी, और इन्हां हाजिरियां दे विच असीं अपनियां गल्लां बातां तुहाडे नाल जरूर ते जरूर कर रहे हां।
2: ते लो जी, अगली कतार दे विच हिमांशु खड़ा है, और हिमांशु कहिंदा है कि मैं उस खूबसूरत जे फल दी गल करांगा, उस फल दे पौधे दी गल करांगा जेड़ा सारियां दा फेवरेट है, और केला जेड़ा है उस सब दा लगभग फेवरेट वाला फूड है, और केले दे विच प्यारे बच्चों बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू लुकी हुंदी है, और सवेरे केला खादा कहिंदे बहुत सारी ताकत दे जांदा है, और प्यारे बच्चों इस फूड दा प्रयोग तुसी करदे ही रहना है, फल भी खाने ने, घर दियां सब्जियां भी खानियां ने, और जंक फूड नू अवॉइड करना है, और हुण पता तुसी की करना है, जेड़ा प्यारा जिहा दोस्त तुहाडे लई एक केले वाली कविता लैके आया ना, ओनू सुनना है आराम दे नाल।
3: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है, मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। साथियों, आज मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है केला। नाजुक पेड़ से लिपटा रहता स्वाद भरा मैं अलवेला, मेरे हैं कितने ही भाई, रहता नहीं मैं कभी अकेला, जगह जगह पर मैं मिलता हूँ, चाहे कोई भी हो बेला, दर्जन लो या आधी दर्जन भरा हुआ मिलेगा ठेला, जब भी खाओ जी भर खाओ, ना करना तुम कभी जुमेला, पीले रंग के कपड़े पहनूं बच्चों, मेरा नाम है केला। धन्यवाद।
2: लो जी, प्यारे बच्चियां ने खूब सारी झड़ी लगाई है अज बरसात दे मौसम दे विच, बाल जगत दे विहड़े दे विच, और इहदे नाल बहुत सारे फुल भी खिड़ गए ने, क्योंकि प्यारे बच्चे जदों सानू खूब सारियां रिकॉर्डिंग करके भेजदे ने ना गुरप्रीत, ते साडे प्रोग्राम दी जिहड़ी रौनक है वह दुगणी चौगणी हो जाती है, और देखो जी प्यारे बच्चे, सानू तुहाडियां रिकॉर्डिंग दा इंतजार रहिंदा है, असीं बार बार कहने आ कि तुसीं इस प्रोग्राम दे विच अपने मोबाइल फोन तो ही साडे प्रोग्राम दे विच हाजिरी लगवा सकते हो। करना की है कि मोबाइल फोन दे उत्ते रिकॉर्डिंग करनी है, और सानू वो रिकॉर्डिंग भेज देनी है, जिवें ये तुसीं परफॉर्मेंस सुनते पे हो, ये भी सानू घर बैठे बच्चियां ने ही रिकॉर्ड करके भेजियां ने।
1: सो जदों असीं गल करदे हाँ बाल जगत दे विच नन्नी कलम तू दी सिलसिले दी, इस दे विच तुसीं भी अपनी आवाज़ जिहड़ी है सारे तक पुजदा कर सकते हो, और जदों असीं लिखण दी गल करदे हाँ, एक पासे पढ़न दी गल कीती सी, हुण लिखण दी गल करदे हाँ, तुसीं लिख सकदे हो, विषय चुन सकदे हो, और उस दे लई तुहानूं बहुत सारा पढ़ना पएगा, बहुत सारे विषयां दे उपर अपनी जानकारी इकट्ठी करनी पएगी। सो दूसरियां दीआं लिखियां होईआं कवितावां कहानियां तुसीं जरूर ते जरूर रिकॉर्ड करके भेज सकदे हो, लेकिन जेकर इही कारगुजारी तुसीं खुद अपने हथ दे नाल करो ते बहुत ही ज्यादा चंगा होवेगा। सो इहो जी कारगुजारी दी जदों असीं गल करदे हां, इस दे लई तुहानूं ढेर सारे उपराले बच्चों जरूर ते जरूर करने पैणगे। फिलहाल अपनी वारी दा इंतजार कर रहा जी अगला बच्चा तरुण नील गगन के तारे पोएम दे नाल।
4: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तरुण है, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। साथियों, आज मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है तारे। नील गगन पर लाखों तारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, रोज रात को ऊपर आते अजब नजारे, हमें दिखाते दिन निकले छिप जाते सारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, रहते हो तुम कोसों दूर, तुमसे मिलने को मजबूर, दूर से ही हम करें इशारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, झिलमिल करते अच्छे लगते, इच्छाओं को पूर्ण करते, तुम हो सच्चे दोस्त हमारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, आओ कभी जमीन पर आओ, चंदा को भी संग ले आओ, हम खेलेंगे साथ तुम्हारे, कितने सुंदर कितने प्यारे। धन्यवाद।
1: प्रोग्राम बाल जगत विच सिलसिला चल रहा है जी नन्नी कलम दा, नन्नी कलम तो दे जरिए बच्चे अपनी हाजिरी लगवा रहे ने, और जदों असीं गल करदे हां दिनां दी, जदों असीं गल करदे हां मौसमां दी, रुत्तां दी, बहुत सारी शब्दावली है, बहुत सारी इहो जिहियां चीज़ां ने जिन्हां दे उपर गल्लां बातां विचार कीते जा सकदे ने। सो जदों असीं नील गगन दे ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ